0: बॉलीवुड
1: में जुनू है, जोश भी जवां है, सांसों में मेरे जलती ये शमा है।
0: दान बांजक लागी, दिनकर कामी, दी आशिक एफ है, मौ